जेता ना दोबी बेजों चे योसा ना यु लुशी रें ला फर्जी चें जो दू जुन्यों जो ताजु जुगा ताओ न्रां ताओ सा गवा मेची संटाशी योता या चुको नवा चो तेरें का चाशी जो तुन चे निमों दर ना चु बेजों चे शू योंचे कौंपला दोबी लजीशी सें दू

जेता ना दोबी बेजों चे योसा ना यू लुशी रेन ला फर्जी चे जो दू जुन्यों जो ताजु जुगवा ताओ रान ताओ सा गवा मेची संटाशी योता या टुपो नवा चो तेरें का चाशी जो दून चे निमों दर ना जु बेजों चे शू यों चे कौंपला दोबी लजीशी सें दू